0: भैया जी बताओ ना, आप हो कौन?
1: मैं वो था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना पन्ना देता था। फिर एक दिन

0: Police officers who find themselves on opposite sides of a controversial case. Prithviraj plays Raman Kumar, who takes matters into his own hands after a horrific rape case sparks outrage across the country. So Kareena plays Ajuni Kohli, who begins investigating what happened and questions whether police can cross the legal line in the name of justice. Here's your trailer.
1: ये तीसरी बार है ना आप और डीसीपी रमन कुमार ने इससे पहले भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस की है।
2: एक्यूज ने मौका ढूंढा और एस्केप करने की कोशिश की।
1: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
2: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
1: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया।
3: सर, क्या ये एक प्लांट पुलिस एनकाउंटर था?
1: 7 अक्टूबर को क्या हुआ? कैन यू टेल अस फ्रॉम द बिगिनिंग?
4: प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए, FIR दर्ज कीजिए, सर्च शुरू कीजिए।
5: एक्यूज 2 साल से इसी रूट पर था।
1: 2 साल, 600 किलोमीटर, और रोकने वाला कोई नहीं।
0: Sure, Kareena says working with Meghna pushed her to explore a character she hadn't tackled before, while she describes Prithviraj as an incredibly intelligent and instinctive actor. Daira hit cinemas on the 18th of September. If that trailer is anything to go by, this one is definitely one to watch. Yeah, it just seems unbelievable. Definitely something that we have to look out for. Next up is a song by One Direction. It is called What Makes You Beautiful.

0: The Breakfast Express.
1: We celebrate the women who lead, who nurture, who protect, often while carrying burdens the world never sees. Award-winning director and entertainer, Kreeti A. Govender.
2: Good morning, O'Neill. I would say to my younger self, plan adventures, spend time with older people. Some people will pick you up, and then you are there to pick other people up.
3: Dinesha Devnarayan here. Own your mistakes, but don't let one chapter define you. Stop trying so hard to prove you belong. You do.
1: Listen to women, respect their voices, protect their rights, and create opportunities for them every day.
0: Another hit song
4: makes me want to dance.
0: Lotus FM. Lotus FM.
5: The Night Cafe on Lotus FM.
6: मैं एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते. मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ. हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ. आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं. है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो.

सामने जाग जाग की ऐसी भागम भार कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।